और अब FM मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्र सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश भर में 162 वंदे भारत रेल सेवाएं संचालित हो रही हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने गुजरात के अंकलेश्वर में एक आवासीय परिसर से संचालित मेफेड्रोन के गुप्त संयंत्र का भांडा फोड़ किया। अवैध मादक पदार्थ के निर्माण और तस्करी नेटवर्क में शामिल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार INS कादम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल किया। कश्मीर में आज अनंतनाग जिले में लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी बलिदान हो गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। ईरान पर अमेरिका के हमले लगातार 11वें दिन भी जारी है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: की वाणी आकाशवाणी
1: द कॉमनवेल्थ गेम्स।
2: नमस्कार। लंबी अनिश्चितता और आयोजन पर मंडराते बादल के बाद आखिरकार वो लम्हा आ गया है जब खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में अदद एक पदक के लिए अपने शरीर के खून का कतरा कतरा झोंक देंगे और फिर टप टप टपकते पसीने से सींच कर एक मेडल पैदा करेंगे। इस पदक की चमक विजेताओं को जीवन में कभी नहीं भुलाने वाली खुशी देगी। बर्मिंघम से चार साल बाद खेलों का कारवां स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंचा है। हालांकि इस बार चार साल का ये अंतराल कुछ ज्यादा ही मुश्किलों से भरा रहा है। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को करनी थी, लेकिन दो साल पहले विक्टोरिया ने लागत बढ़ने और फंड की कमी का तर्क देकर आयोजन से अपना हाथ खींच लिया। इससे कॉमनवेल्थ फेडरेशन मुश्किल में पड़ गया। आयोजन से दो साल पहले नए मेजबान की तलाश का काम आसान नहीं था। काफी प्रयास के बाद आखिरकार ग्लासगो को मेजबानी सौंपी गई, लेकिन यहां भी एक अड़चन आ गई। ग्लासगो ने भी कम बजट की बात कहकर ये शर्त रख दी कि वह सिर्फ उन खेलों का ही आयोजन कर सकता है जिनके लिए वेन्यू उनके पास पहले से ही मौजूद है। ऐसे में खेलों की संख्या में कटौती की गई। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 19 खेलों के मुकाबले ग्लासगो में यह संख्या सिर्फ 10 रह गई है। जो खेल स्पर्धाएं ग्लासगो में होने जा रही हैं, उनमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, ट्रैक साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, 3x3 बास्केटबॉल, लॉन बॉल्स, नेटबॉल, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, जूडो और बॉक्सिंग शामिल हैं। दूसरी तरफ जिन 9 खेलों को हटाया गया है उनमें रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, स्क्वाश, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बीच वॉलीबॉल और रग्बी सेवन शामिल हैं। इस फैसले का बड़ा असर भारत की पदक की संभावनाओं पर भी पड़ा है। हम आपको बता दें कि बर्मिंघम में भारत ने बीच वॉलीबॉल और रग्बी सेवन को छोड़कर बाकी सभी खेलों में हिस्सा लिया और 61 मेडल्स भी जीते थे। भारतीय दल को बैडमिंटन में 2, क्रिकेट में 1, स्क्वाश में 2, टेबल टेनिस में 7 और रेसलिंग में 12 मेडल मिले थे। ऐसे हालात में पदकों की संख्या का कम होना तय है। अब उन खेलों की बात करें जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा हैं और जहां भारत के लिए पदक की बेहतर संभावना है। भारत को बर्मिंघम में बॉक्सिंग में 7, जूडो में 3, वेटलिफ्टिंग में 10, एथलेटिक्स में 8, लॉन बॉल में 2 और पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 मेडल मिला था और कुल 31 मेडल भारत ने जीते थे। इस बार भी पदकों की संख्या इसी के आसपास रहने की उम्मीद है, क्योंकि स्विमिंग, ट्रैक साइकिलिंग, 3x3 बास्केटबॉल, नेटबॉल और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में हमारी दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। इस बार के 125 खिलाड़ियों का भारतीय दल मेडल के लिए अपनी सारी ताकत झोंक देगा। इस दल में 77 पुरुष और 48 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। सबसे बड़ा 32 सदस्यों का दल इस बार एथलेटिक्स में पदक की दावेदारी के साथ उतरेगा। इसके बाद मुक्केबाजी और जूडो में 14-14 और वेटलिफ्टिंग में 12 खिलाड़ियों का दल हिस्सा लेगा। हम आपको ये भी बता दें कि ओलंपिक मेडलिस्ट वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन और भारत की संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई की प्रतिनिधि और वरिष्ठ खेल पत्रकार हिमिका चौधरी। हिमिका, आपका स्वागत।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हिमिका, आखिर तमाम हाना के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने जा रहा है, लेकिन पिछले आयोजन के मुकाबले इस बार 19 की जगह सिर्फ 10 खेल होंगे। इसका क्या असर इन खेलों के आयोजन पर पड़ सकता है?
3: पिछली बार 61 मेडल्स हमको मिले थे, इस बार उम्मीद है कि एटलीस्ट 32 या 33 मेडल्स, 33 मेडल्स हम लेके आए। जैसा कि सबको पता है अब, और आपने भी इसका जिक्र किया, कि जो हमारे मेन मेडल डिसिप्लिन्स हैं, जैसे बैडमिंटन है, जैसे बॉक्सिंग है, जिसमें हम लोग हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं, इस वाले ग्लासगो CWG में नहीं है, तो उम्मीद ये है कि जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें तो हम जरूर अच्छा करेंगे, पर हाँ, ओवरऑल एक इम्पैक्ट तो जरूर रहेगा मेडल टैली में।
2: जी, और भारत के खिलाड़ियों के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये गेम्स न सिर्फ पदक जीतकर मनोबल बढ़ाने के लिए, बल्कि उसी साल होने वाले एशियन गेम्स और एक साल बाद होने वाले ओलंपिक की तैयारियों के लिए भी अच्छा मंच प्रदान करता रहा है। इस बार कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, बैडमिंटन, आर्चरी का न होना क्या एशियाई खेलों और ओलंपिक्स में भी भारत की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है?
3: आपने बिल्कुल सही कहा। तो उस हिसाब से तो जो एथलीट जाते हैं, और ये हम सबको पता है

0: कि सिर्फ प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग करना ही इनफ नहीं होता, एक एथलीट के लिए सबसे जरूरी होता है कंपटीशन। एक क्लासिक एग्जांपल है नीरज चोपड़ा का कि वो जिस एंगल में भाला पहले फेंकते थे, फिर उनको पता चला कि उस एंगल में वो अचीव नहीं कर पा रहे, उनका वो जो 90 जो द ड्रीम मार्क है, तो उन्होंने उस चीज को चेंज किया। तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन हम कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी नहीं जा पा रहे हैं CWG पर, एशियन गेम्स में जाएंगे और आगे ओलंपिक में जाएंगे LA में, उनके लिए इट्स डेफिनेटली अ लॉस्ट चांस। और ये जैसा आपने कहा, खिलाड़ी का मनोबल और साथ में खिलाड़ी का एक एक्सपीरियंस रहता है, वो उनको इस बार नहीं मिलेगा। पर मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि अभी इंडिया में हम लोग इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू आउट द ईयर। आप अगर देखें तो सिर्फ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में हम जा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं, जितने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन आज की तारीख में हम इंडिया में होस्ट कर रहे हैं, कि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2025-26 में हमने 36 हमने कॉम्पिटिशन जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हमने इंडिया में होस्ट किया। अभी 26 पूरा खत्म भी नहीं हुआ है, हम और 11 जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इंडिया में हम होस्ट करेंगे अगले साल, 19 ऑलरेडी पाइपलाइन में है। ये सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल के कॉम्पिटिशन है, अच्छे स्तर के कॉम्पिटिशन है, तो खिलाड़ियों को कॉम्पिटिशन मिलते रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। पर वो जो CWG से एशियन गेम्स जाने का एक जो वो आप कह सकते हैं चार्म होता है, वो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, और कुछ कुछ खेलों में ये लॉस जरूर रहेगा।
1: हिमिका, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है, जिसमें हम ढेर सारे पदक भी जीतते रहे हैं, लेकिन जो खेल इस बार शामिल किए गए हैं उसके लिए हमारे खिलाड़ियों ने तैयारियां कैसी की हैं, पदक की कितनी बेहतर संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं?
0: देखिए, हमेशा कोशिश यही होता है, वो चाहे खिलाड़ियों का हो, वो चाहे सरकार का हो, जो एक सपोर्ट सिस्टम, एक इकोसिस्टम स्पोर्ट्स का तैयार किया है, ग्रास रूट से लेके एलीट एथलीट तक सपोर्ट देने का, हमेशा एफर्ट यही रहता है कि कंपटीशन जिस स्तर का भी हो, जैसे कि इस बार ट्रंकेटेड है, पर एफर्ट में कोई कमी नहीं है, ना एथलीट के तरफ से ना सपोर्ट के तरफ से। तो मुझे लगता है कि हम लोग डेफिनेटली पिछले बार के मुकाबले वो हर डिसिप्लिन जिसमें हम इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं कम मेडल तो नहीं लाएंगे, क्योंकि पिछले पूरी CWG साइकिल में, और व्हेन आई से CWG साइकिल, 4 साल का साइकिल होता है, उन 4 सालों में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जब हमारे एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, मुझे कहते हुए खुशी है कि एटलीस्ट हर एक इन डिसिप्लिन में, एथलेटिक्स खास करके, क्योंकि उसमें हम लोगों की संभावनाएं काफी ज्यादा है, हम सब जानते हैं कि सारी नजरें टिकी हुई है नीरज चोपड़ा पे, तो नीरज चोपड़ा तो चलिए मैंने वो एक्सपेक्टेड है, वो होने ही वाला है, पर बाकी भी जैसे आप मुरली श्रीशंकर ले लीजिए, तेजस्विन ले लीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग, तो पिछले कई महीनों में ये सब इंटरनेशनली ट्रेन कर रहे हैं। इंडिया में तो ट्रेनिंग लेते ही है, साई बेंगलुरु में भी वो ट्रेनिंग लेते हैं, NSNIS पटियाला में भी ट्रेनिंग करते हैं, बट ये नजर में रखते हुए कि वो जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनके स्तर पे, उनके जैसा उनको ट्रेनिंग का मौका मिले, फॉरेन कोचेस का सपोर्ट मिले, तो ऑलरेडी जैसे एथलेटिक्स वाले पोलैंड में है, स्पाला में, साइकिलिंग के बच्चे हैं फ्रांस में, ऑलरेडी वो लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, जिम्नास्टिक्स के बच्चे हैं वो ऑलरेडी UK पहुंच चुके हैं और वहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसे और बाकी डिसिप्लिन का भी वही है, 20 से ज्यादा फॉरेन कोचेस इंडियन कोचेस के साथ लगे हुए हैं। इंटरनेशनल जो कोचेस है उनमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ओलंपिक चैंपियन तैयार कर चुके हैं, बहुत सारे कोचेस खुद ऑलरेडी ओलंपियंस रह चुके हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है, वो जिस तरह की टेक्निक इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे हमारे एथलीट्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और सब कुछ मिला के, मतलब वेदर इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, फॉरेन कोचेस हो, या हमारे देश में जो साई सेंटर्स और एकेडमीज में वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब मिला के तैयारी एकदम 100% से ज्यादा है, और इसीलिए उम्मीद ये है कि पिछली बार जितना मेडल इन सब डिसिप्लिन में हमने जीता था, एटलीस्ट उतना या उससे ज्यादा ही मेडल इस बार हम लेके आएंगे।
1: जैसा कि हमने बताया कि इस बार एथलेटिक्स में भारत का सबसे बड़ा दल भाग लेने जा रहा है। ट्रैक इवेंट में पुरुष वर्ग में पदक की एक बड़ी उम्मीद राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर में हिस्सा लेंगे। हम आपको बता दें कि गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर के बीच 100 मीटर स्प्रिंट में हाल के दिनों में कमाल की प्रतिस्पर्धा रही है। हालांकि गुरिंदर वीर सिंह वर्तमान में 10.09 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ देश के सबसे तेज धावक हैं। उधर अनिमेश कुजूर ने जर्मनी में 10.14 सेकंड का समय निकालकर विदेशी धरती पर सबसे तेज भारतीय होने का रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि ग्लासगो में भारत की

0: तरफ से 100 मीटर दौड़ में भाग लेने का मौका गुरिंदर वीर सिंह को मिलने वाला है। उधर 200 मीटर दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व सबसे तेज 20.32 सेकंड का समय रखने वाले अनिमेश कुजूर करेंगे। विशाल टीके की दावेदारी 400 मीटर दौड़ मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले और रमेश का दावा 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में होगी। गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर, तेजस शिर से 110 मीटर हर्डल, यशस पलाक्ष 400 मीटर हर्डल और संतोष कुमार तमिल रासन 400 मीटर हर्डल में भाग लेंगे। ट्रैक विमेन्स कैटेगरी में रशदीप कौर 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, नीरू पाठक 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, अंसा बाबू 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज 5000 मीटर, प्रियंका गोस्वामी 10000 मीटर वॉक, रवीना गायकवाड़ 10000 मीटर वॉक में शामिल हैं। उधर फील्ड मेंस कैटेगरी की बात करें तो देव मीणा और कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट में सबसे बड़ी उम्मीद होंगे। सर्वेश अनिल कुशारे और आदर्श राम जे हाई जंप, तेजस्वी शंकर हाई जंप, डेकाथलान मुरली शिशंकर और लोकेश सत्यनाथन लॉन्ग जंप, प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ट्रिपल जंप, समरदीप सिंह गिल और तजिंदर पाल सिंह तूर शॉटपुट, नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह जैवलिन थ्रो में भारत की बड़ी उम्मीद होंगे। फील्ड विमेन्स कैटेगरी में पूजा सिंह हाई जंप, मनप्रीत कौर शॉटपुट, सीमा कालीरमन और निधि रानी डिस्कस थ्रो में भारत की चुनौती की अगुवाई करेंगी। वैसे अगर दोहा डायमंड लीग में चौथे नंबर पर रहे नीरज की बात करें तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी संभावनाओं को लेकर काफी उम्मीद रखते हैं।
1: नहीं, मैं काफी खुश हूँ अपने प्रदर्शन से, क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा था और काफी टाइम बाद मैं कंपटीशन खेला, तो मैं काफी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। और ये इस साल का पहला कंपटीशन था और अभी तो पूरा सीजन बाकी है, तो ऐसा है कि और अच्छी तरह देखने को मिलेगी।
0: भारत का सबसे बड़ा दल एथलेटिक्स में ग्लासगो जा रहा है, ऐसे में भारत के लिए पदकों की वास्तविक तौर पर कितनी बेहतर संभावना है?
2: देखिए, एक्सपेक्टेशन पिछली बार से कुछ कम नहीं है। एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा इस बार एथलेटिक्स से ही है और जैसा कि आपने कहा कि बड़ी संख्या में कंटिंजेंट जा रही है, पर हम ये भी याद रखें कि एथलेटिक्स में भी सारी डिसिप्लिन्स नहीं है, पर जो डिसिप्लिन्स में भारत स्ट्रांग है जैसे जेवलिन हो गया, ट्रैक एंड फील्ड, ये सारे हमारे जो जंप्स है, क्योंकि वो सब है इस बार के CWG में, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि पिछली बार का जो नंबर था उसको शायद हम कुछ एक या दो मेडल से क्रॉस कर जाए इस बार। एथलेटिक्स के लिए पिछले सीजन में ही और कुछ लास्ट एक डेढ़ महीने की बात होगी, टोटल 26 नेशनल रिकॉर्ड टूटा है सिर्फ एथलेटिक्स में। तो अभी एथलेटिक्स में हमारा जो प्रदर्शन है वो बहुत ही, ये हम कह सकते हैं कि परहैप्स द बेस्ट इन द लास्ट फ्यू कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स। अभी इस टाइम पे हमारा जिस तरह का बेंच स्ट्रेंथ है, हमारा जिस तरह का प्रेपरेशन है, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ बहुत क्रिटिकल होता है, ये हम सबको पता है। तो इस बार क्योंकि ये यंग एथलीट्स है जो बहुत प्रिपेयर्ड है, बहुत ड्रिवन है, एक भूख है उनमें, एक हंगर है, क्योंकि उनको भी प्रूव करना है बहुत कुछ।
0: एथलेटिक्स के बाद जिस खेल से भारत को सबसे अधिक उम्मीद है उसमें बॉक्सिंग सबसे ऊपर है। इसमें पुरुष वर्ग में 55 किलोग्राम में जादूमणि सिंह, 60 किलोग्राम में सचिन सिवाच, 65 किलोग्राम में आदित्य प्रताप सिंह, 70 किलोग्राम में सुमित कुंडू, 80 किलोग्राम में अंकुश, 90 किलोग्राम में कपिल पोखरिया और 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में नरेंद्र बेरवाल की चुनौती होगी। महिला वर्ग के 51 किलोग्राम में साक्षी चौधरी, 54 किलोग्राम में प्रीति पवार, 57 किलोग्राम में जैस्मिन लांबोरिया, 60 किलोग्राम में प्रिया घंगास, 65 किलोग्राम में परवीन हुड्डा, 70 किलोग्राम में अरुंधति चौधरी और 75 किलोग्राम में लवलीना बोरगोहेन की दमदार चुनौती होगी। साक्षी चौधरी इन खेलों में अपनी संभावनाओं के बारे में क्या कह रही हैं? वो सुनते हैं।
3: जी, हम अभी कॉमनवेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हम 9 जुलाई को आयरलैंड जाएंगे जहां हमारा मल्टीनेशनल ट्रेनिंग कैंप होगा, वहां से हम डायरेक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जाएंगे, तो अभी हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है।
0: पुरुष वर्ग में 60 किलोग्राम में भारत की पदक की बड़ी उम्मीद है सचिन सिवाच।
4: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया, अपने अपोनेंट्स के सारे उनकी वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है, सभी के गोल्ड लिए आने हैं।
0: बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह को भी बॉक्सर्स से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं।
5: देखिए, 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे, उस चैंपियनशिप में भी मैं मौजूद था और मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।

0: बॉक्सिंग की बात करें तो सिर्फ राष्ट्रमंडल खेलों में ही नहीं, एशियन गेम्स और ओलंपिक में भी हम इस खेल में पदक जीतते रहे हैं। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और जादूमणि सिंह जैसे उभरते हुए नाम हैं। वहीं महिला वर्ग में टोक्यो 2020 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन के साथ साथ प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, प्रिया गंगास जैसे बॉक्सर्स की भी अपने अपने वर्ग में तगड़ी चुनौती होगी। पदक की कितनी उम्मीद कर सकते हैं ऐसे बॉक्सर्स के रहते हुए?
1: देखिए, बॉक्सिंग हमेशा से हमारा एक स्ट्रांग पॉइंट रहा है, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, बॉक्सिंग में हम अच्छा करते आ रहे हैं। इस बार बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है और ये जो प्रेपरेटरी जो फेज था, इसमें जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हमारी टीम ने पार्ट लिया, जैसे कि इंडिया एशियन चैंपियनशिप्स में थर्ड नंबर पे उन्होंने फिनिश किया और इंटायर वुमेन स्क्वाड ने मेडल्स लेके आए। तो हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ एथलीट्स है वो इस टाइम पे बहुत अच्छा है और आई वुड गो एज फार एज टू से कि महिलाओं का अभी इस बार CWG में मुझे लगता है चांसेस पुरुषों से भी ज्यादा है। तो हम अपने जो नजरें हैं वो महिला बॉक्सर्स पे टिकाए रखें, उनको उनके गेम्स को देखें और मुझे लगता है कि वाकई में मजा आने वाला है और आगे जाके इनमें से बहुत सारी लड़कियां LA तक तो जरूर खेलेंगी। मुझे ये लगता है कि ये सब लंबे टाइम, हालांकि बॉक्सिंग रेसलिंग ये थोड़े इंजरी प्रोन भी होते हैं, पर मुझे लगता है कि ये सब लंबे टाइम के लिए है और खेलेंगे और CWG में अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे।
0: वेटलिफ्टिंग भी ऐसा खेल है जिसमें भारत कुछ पदकों की उम्मीद कर सकता है। इसकी टीम की बात करें तो पुरुष वर्ग में 60 किलोग्राम वर्ग में ऋषिकांत सिंह, 65 किलोग्राम में एम राजा, 79 किलोग्राम में अजय बाबू, 94 किलोग्राम में दिलबाग सिंह और 110 किलो से अधिक भार वर्ग में लवप्रीत सिंह अपनी ताकत दिखाएंगे। महिला वर्ग में पदक की सबसे बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू 48 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव 53 किलोग्राम, बिंदिया रानी देवी 58 किलोग्राम, हरजिंदर कौर 69 किलोग्राम, संजना 77 किलोग्राम, सेराम निरुपमा देवी 86 किलोग्राम और मार्टिना देवी 86+ किलोग्राम भार वर्ग में भारत की उम्मीदों का केंद्र होंगी। फिट होने के बाद वापस लौट रही मीराबाई चानू पदक को लेकर कितनी आशावान है ये सुनते हैं।
2: बहुत लकी हूँ कि हम पहले ही बर्मिंघम में आके हम ट्रेनिंग करने का मौका मिला है। हम सबका होप कर रहे हैं कि हम सब मेडल लाए इंडिया के लिए, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रही है।
0: जीहिमिका कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग में भी हमारे अच्छे खासे पदक आते रहे हैं। पदक की सबसे बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू फिट होकर वापसी कर रही हैं। इस बार दोनों वर्गों को मिलाकर हम क्या उम्मीद कर सकते?
1: देखिए, मीरा का तो ये है कि उसको मैजिक मीरा कहे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो एक्चुअली एक मैजिशियन है। जब हम मीराबाई को देखते हैं और जैसा उनका कद है और छोटी सी लड़की है मणिपुर से, जैसा कि आपने कहा इंजर्ड थी, पर वो उसने काफी दिनों तक USA में रह के ट्रेनिंग भी किया, रिहैबिलिटेशन भी किया, तो मीरा का तो डेफिनेटली एक मेडल चांस हम कह ही सकते हैं। जैसा आपने कहा कि एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा है, तो वेटलिफ्टिंग में मीरा का चांस हम इक्वली उसी तरह से सोच सकते हैं। भारत को गोल्ड मिलने वाले हैं, उसमें से एक तो मीराबाई चानू के नाम होना ही चाहिए और होगा भी शायद।
0: तो दोस्तों, ये थी भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की वरिष्ठ खेल पत्रकार और प्रतिनिधि हिमिका चौधरी। आकाशवाणी के स्टूडियो आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और जैसा मैंने कहा, लेट्स चीयर फॉर भारत।
0: जूडो में पिछली बार भारतीय दल ने 3 पदक जीते थे। इस बार न सिर्फ पदकों की संख्या बढ़ने बल्कि पहले गोल्ड मेडल की भी उम्मीद की जा रही है। चुस्ते स्फूर्ति और ताकत के इस खेल में भारत की तरफ से मेंस कैटेगरी में हर्ष सिंह की चुनौती 60 किलोग्राम, रोहित बसीर माजगुल की 66 किलोग्राम, अरुण कुमार की 73 किलोग्राम, हर्ष टोकस की 81 किलोग्राम, करणजीत सिंह मान की 90 किलोग्राम, अवतार सिंह की 100 किलोग्राम और यश घंगास की 100 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में चुनौती है। महिला वर्ग में अस्मिता डे 48 किलोग्राम, श्रद्धा कदाबुल चोपड़े 52 किलोग्राम, यामिनी मौर्य 57 किलोग्राम, उन्नति शर्मा 63 किलोग्राम, इनुन गनबी ताखिल्लाम्बम 70 किलोग्राम, इशरूप नारंग 78 किलोग्राम और तुलिका मान 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में अपना अपना दावा पेश करेंगी। पिछली बार सिल्वर मेडल जीतने वाली तुलिका मान ने इस बार गोल्ड के लिए ढेर सारी तैयारी की है। सुनते हैं क्या है उनकी तैयारी।
3: बीइंग एन एथलीट, एलीट एथलीट और ऑलरेडी आई प्लेड द कॉमनवेल्थ 22nd, तो मेरा अभी एम अलग है। मैं उन चीजों को, प्रेशर को नहीं लेके चल रही हूँ। मेरा मेन ये है कि 22 में जो मेरा सिल्वर

0: आया था उसे मुझे अभी कन्वर्ट करना है।
1: तैराकी में भारत का प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक बहुत अच्छा नहीं रहा है। इतिहास की भी बात करें तो सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल आया है और वो भी पैरा स्विमिंग के जरिए। फिर भी ग्लासगो में स्विमर्स की अच्छी खासी भागीदारी होगी। भारत ने स्विमिंग में भले ही कोई पदक अब तक न जीता हो, लेकिन तैराक अनीश गौड़ा को इस बार खूब सारी उम्मीदें हैं।
2: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत बड़ा इवेंट है, हमारी बहुत हार्डवर्क हो रही है। हम भी चाहते हैं कि वहाँ जाके हमारे देश को प्राउड करे और एक मेडल जीत के वापस आए।
1: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में भी भारत की दावेदारी है। मेंस कैटेगरी में तपन मोहंती, तपेश्वर नाथ दास, स्वातिश केपी, सत्यजीत मंडल, जबकि विमेंस कैटेगरी में प्रणति नायक, निष्का अग्रवाल, इशिता रेवाले, प्रतिष्ठा सामंता पदक के लिए जोर लगाएंगी। तपन मोहंती जिम्नास्टिक्स में भारत के नेशनल चैंपियन हैं। ट्रैक साइकिलिंग में भी भारत का दावा होगा। रोनाल्डो सिंह लेटोंजाम 1000 मीटर टाइम ट्रायल, डेविड बेकहम एलकाटो चुंगो और जेम्स सिंह किथेलाक्रम एलिट किरिन, दिनेश कुमार और रोजित सिंह यांगलेम पुरुष एंड्योरेंस और परस्यूट स्पर्धाएं, जबकि सेखो हर्षवीर सिंह 4000 मीटर टीम परस्यूट में साइकिलिंग ट्रैक पर होंगे। 3x3 बास्केटबॉल के विमेंस व्हीलचेयर कैटेगरी में भारत की चुनौती होगी, जिसमें रीना, रमेश चंद्र गुप्ता, इरेंगबंग रितु चानू, जाधव मीनाक्षी हरिश्चंद्र, रायन्नावर लक्ष्मी रायप्पा शामिल होंगी। लॉन बॉल्स में भी भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी होगी। पिछली बार भी इस खेल में हमें 2 मेडल मिले थे। इस बार मेंस कैटेगरी में सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल, डबल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार शामिल हैं। विमेंस कैटेगरी में नयन मोनी सैकिया सिंगल्स में, जबकि रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह की डबल्स में सहभागिता होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा खिलाड़ियों से भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। क्या कुछ हो सकता है पैरा एथलीटों द्वारा, पैरा खिलाड़ियों द्वारा? संपूर्ण रिपोर्ट के साथ हमारे सहयोगी शाहिद आजमी।
3: जब इरादे बुलंद हों तो कोई भी बाधा मंजिल का रास्ता नहीं रोक सकती। भारत के पैरा खिलाड़ी इसी जज्बे के साथ अब ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि खिलाड़ियों में इस बार अलग ही जोश है।
4: ग्लासगो जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, आज पैरा खिलाड़ियों की सेंड ऑफ सेरेमनी, और मैं हर एथलीट को जानता हूं, अब की बार खिलाड़ियों में एक अलग ही जुनून है। कहीं नहीं कि हम पहले खेलने जाते थे, अब खिलाड़ी मेडल जीतने जा रहे हैं। अब की बार जो परफॉर्मेंस होगी वो एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस होगी। आप देखिए कॉमनवेल्थ में जो पैरा खिलाड़ी विशेष तौर पे, उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहेगी और कम से कम हम 5 से 6 मेडल जीतेंगे।
3: ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का 28 सदस्यीय पैरा दल 5 खेलों में चुनौती पेश करेगा। दल में 11 पैरा एथलीट, 7 पैरा पावर लिफ्टर, 5 पैरा तैराक, 1 पैरा ट्रैक साइक्लिस्ट और 4 महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी 3x3 टीम में शामिल हैं। बात पैरा एथलेटिक्स टीम की करें तो इनमें देवेंद्र कुमार, दिलीप महादू, राकेश भाई भट्ट, रमेश सनमुगम, शुभमन जुयाल, मोहम्मद बासिल, सोमन राणा, सागर थायत, श्यांश द्विवेदी, शर्मिला और शिल्पा भारती चुनौती की अगुवाई करेंगे। हमने भारतीय पैरा दल में से कुछ खिलाड़ियों से उनकी तैयारियों और संभावनाओं के बारे में बात की। ये है डिस्कस थ्रोअर देवेंद्र कुमार।
5: अभी ये मेरा सेकंड कॉमनवेल्थ गेम है, फुल तैयारी के साथ अभी जा रहे हैं और वहाँ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपना पर्सनल बेस्ट देने की कोशिश करेंगे।
3: पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला का कहना है कि पहले से बेहतर होगा इस बार।
6: 2022 में भी कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेट किया था और अब भी कर रही हूँ। पीछे से अब बेटर है, अब से आगे बेटर होगा, आगे आगे बेटर होता ही जा रहा है। अच्छी सपोर्ट मिल रही है, बीसीआई और साई की और हमारी सरकार खिलाड़ियों को बहुत ध्यान दे रही है और अच्छी मेहनत करके हम भी पीछे नहीं हटने वाले, देश के लिए मेडल लेके देंगे।
3: तैयारियाँ आपकी कैसी है?
6: हमारी बेस्ट तैयारियाँ हैं, हम डेली 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। मेरा सपना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं कॉमनवेल्थ में।
3: यह 100 मीटर T47 में दौड़ लगाने वाले मोहम्मद बासिल।
7: इट इज माय फर्स्ट मेजर कॉम्पिटिशन, लास्ट ईयर आई स्टार्टेड द पैरा स्पोर्ट्स, दिस ईयर आई विल फर्स्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। सो हैप्पी, सो एक्साइटेड टू द बिग गेम्स, वेरी वेरी एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट वी गेट इट मेडल रिप्रेजेंट इन इंडिया।
3: देश के पैरा खिलाड़ी कितने मेडल जीतेंगे, यही सवाल हमने पैरा एथलेटिक कोच सत्यनारायण से किया।
8: पैरा ओलंपिक डेफिनेटली हम लोग 7 मेडल जीतने का उम्मीद कर रहा है। 5 मेडल तो कंफर्म है, 100% है। 2 मेडल नीचे ऊपर हो सकता है। मैं एथलीट होके बोलता हूँ, एथलेटिक्स पैरा का बहुत अच्छा करेगा।
3: जो एथलेटिक्स टीम जो आपको दी गई है, जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए उनको देखते हुए क्या लग रहा, कितनी मजबूत है, क्या वहाँ पर संभावना उनसे देख

0: से आप लोग को मालूम है अभी ग्लासगो में बहुत ठंड है, फिर भी मेरा एथलीट पूरा प्रिपेयर है, 100% हम अच्छा मेडल लेके आएगा।
1: अब बात करते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ियों की, जिनमें परमजीत कुमार, अशोक, झंडू कुमार, सुधीर, जसप्रीत कौर, कस्तूरी राजमणि और सुमन देवी से पदक की उम्मीदें रहेंगी। संभावनाओं पर पैरा पावर लिफ्टिंग कोच राजेंद्र सिंह रहेलू कहते हैं,
2: कॉमनवेल्थ में अच्छी संभावना है, हमारे सारे खिलाड़ी फिट है, हम कोशिश है हमारी केसवर पावर लिफ्टिंग में अच्छे मेडल आएंगे। और बाकी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला ही है, देवेंद्र जी ने, कि बहुत बड़ा दल जा रहा है इस बार, पहली बार इतना बड़ा दल जा रहा है, तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया बनाएगा, मुझे श्योर है कि हम जीत जाएंगे।
1: पैरा तैराकी में रवि वीरा, वेंकट बुडगिना, अली इमाम, सुयश जाधव, चैतन्य विश्वास कुलकर्णी और स्वातिक पाटिल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी तरह पैरा ट्रैक साइकिलिंग में लीशा दास अकेली भारतीय खिलाड़ी होंगी, जबकि महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल 3x3 टीम में रितु चानू, इरेगबम, रीना रमेश चंद्र गुप्ता, मीनाक्षी हरिचंद जाधव और लक्ष्मी रायप्पा चुनौती पेश करेंगी। इस अवसर पर रियो पैरालंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट दीपा मलिक से हमने राष्ट्रमंडल खेलों में देश के खिलाड़ियों से संभावनाओं पर बात की।
3: संभावनाएं बहुत अच्छी हैं इस टीम में, हमारे कॉमनवेल्थ रैंकिंग 1, वर्ल्ड रैंकिंग 1 ऐसे खिलाड़ी भी जा रहे हैं। तैयारियों से ज्यादा खुशी इस बात की है कि नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बढ़े हैं, अब 5 विविध स्पोर्ट्स में हमारे पैरा एथलीट जा रहे हैं और लगभग 28 एथलीट जा रहे हैं, इसमें 40% महिलाएं जा रही हैं, मुझे बहुत खुशी है।
1: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा स्पर्धाओं में अब तक 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। इस बार उम्मीद है कि भारतीय पैरा खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।
4: भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से विशेष बात की कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में हमारे सहयोगी शाहिद आजमी ने।
5: आई होप दैट प्लेयर्स डिड प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड इसी साल थोड़ा लिमिटेड इवेंट है हमारा, बट फिर भी अच्छा, होप दैट दे डू गुड।
6: एशियन गेम्स का सेमीफाइनल मानती से इसको कैसे देखते हैं, गेम्स कम है, होप से ज्यादा? लेकिन
5: एशियन गेम्स के पहले ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, वो तो अच्छा है, एशियन गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एनीवे 2 मंथ्स इज देयर दे विल डू, बट अभी तो ग्लासगो में भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस भाई, बिकॉज द गवर्नमेंट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल association is in one line and they are providing all the facilities which players wants. So exposure is the must. They are getting foreign exposure and all those things, and association is working on it, and lot of sponsors also. For IOA is also giving full support to players. So that I hope that players achha karenge.
6: Last question. 2023 में हम host कर रहे हैं Commonwealth Game. तो यहाँ और कुछ सीखने के लिए होगा, देखने के लिए होगा. IOA इसके बारे में क्या कहेगा? कैसे plan कर रहा है?
5: Our team is there. Our IOA team and government team, all team is there to see what are all the things they are doing. हम तो पीछे नहीं है, पहले भी बड़ा competition तो इधर organize किया है, but फिर भी what are all the changes we have to do, all team will be there.
4: भारत के खेल मंत्री मनसुख मांडविया को भी दल से ढेर सारे पदक की उम्मीदें हैं।
7: मेरा पक्का विश्वास और भरोसा है कि भारतीय एथलीट अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत हौसले के साथ खेलेंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे और भारत का परचम कॉमनवेल्थ में लहराएंगे। दोस्तों, मोदी जी ने हमारे एथलीट को अपने परम मित्र कहे, जब हमारे एथलीट कॉमनवेल्थ के लिए जा रहे हैं तब दोस्तों मोदी जी की शुभेच्छा आपके साथ है, देश के 140 करोड़ की जनता का भरोसा आपके साथ है।
4: ग्लासगो में भारत के लिए खेलों से इतर भी बहुत कुछ होने वाला है, बता रहे हैं भारत के मिशन प्रमुख, दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और भारत की डेविस कप टीम के कप्तान रोहित नागपाल।
8: कि सिंबॉलिकली अगर आप देखा जाए तो हम लोग नेक्स्ट होस्ट है, तो खेल के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान हो चुकी है वहाँ पे। हम लोगों को बेटन लेना है, हम लोगों को वहाँ से फ्लैग लेना है कॉमनवेल्थ का, हम लोगों को कल्चरल डांस दिखाना है इंडिया का, फिर एक ट्रेड कट ग्रुप भी बन रहा है हम लोगों का, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है, एक्सचेंजेस जो की हम लोग प्लान कर रहे हैं सारा वहाँ खेल के अलावा भी। तो सिम्बॉलिकली अगर देखा जाए ऑलराउंडेडली तो एक बहुत जरूरी ये एक ट्रिप है जिसके अंदर हम लोग जाके ये सब चीजें लेके आएंगे इंडिया के लिए, और सारा फिर फोकस शिफ्ट करेगा इंडिया पे कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो ये काफी सालों बाद एक नया गेम्स इंडिया को आएगा, अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक होलिस्टिक पिक्चर है।
4: कुछ ही घंटे में पदकों की दौड़ शुरू होने वाली है और एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकलने की होड़ मचने वाली है। पदकों की इस आपाधापी में किसी का सितारा चमकेगा तो किसी को जीत के लिए नई सीख और जज्बा हासिल होगा। तो कल से रोमांच शुरू होने वाला है, हम भी आपसे जुड़े रहेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की हर हलचल, धड़कन और रोमांच के साथ। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान और सहयोगी शाहिद आजमी के साथ धर्मेंद्र को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।
9: The Commonwealth Games.